तुम हथियार थोड़े रखते हो या बहुत, घरों से निकल आओ और अल्लाह के रास्ते में माल और जान से जिहाद करो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है बशर्ते के समझो। अगर माल गनीमत आसानी से हासिल होने वाला और सफर भी हल्का होता तो ये तुम्हारे साथ शौक से चल देते, लेकिन मुसनजर आई तो उज्र करेंगे और अल्लाह की कसमें खाएंगे कि अगर हम ताकत रखते तो आपके साथ जरूर निकल पड़ते। ये इस तरह अपने आप को हलाक कर रहे हैं। और अतर इसके कि तुम पर वो लोग भी जाहिर हो जाते जो सच्चे हैं, तुम्हें मालूम हो जाते, इनको इजाजत क्यों नहीं मांगते कि पीछे रह जाएं, बल्कि चाहते हैं कि अपने माल और जान से जिहाद करें। और अल्लाह परहेजगारों से वाकिफ है।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अपना शहर अपना घर मट और मटियारी की आवाज
1: 91.6।
2: इट्स 9 AM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
3: व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज, अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
5: brought to you by
6: Super White Rice Collagen Beauty Cream, a project by Aksa Cosmetics Pakistan।
4: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
5: brought to you by
6: Super White Oil Free Beauty Cream, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिपचिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोजेक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
7: सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी जो मान वधाई।

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics.
5: वफाकी हुकूमत के पी हुकूमत के गैर फाल बढ़ाए सूबे में इमरजेंसी गवर्नर राज लागू करे छो गवर्नर फी सूबे जो इंतजामी सरबराह मुकर सदर आसिफ अली जरदारी के पी में इमरजेंसी लागू करण वाले वफाकी काबिना की समरी ते सही करे छी एवाने सदर के पधराए मूजिब के पी में सरकारी हदन ही कानून लागू कदड़ इदारन ते दहशतगर्द हमलन में वाद थी सूबा हुकूमत दहशतगर्दी इलाक कानूनियत जो तदारुक करण में नाकाम रही मौजूदा हालतुन सबब के पी हुकूमत नथी हलाए सकजे आईन जे आर्टिकल 232 ऐं 234 तहत सदर आसिफ अली जरदारी इमरजेंसी लगाइण जी समरी ते सही कई
6: उनको फिर इन्फॉर्मली कहा गया कि आप अपनी बंद कर दें ये लॉन्ग मार्च ये अपने घर में कॉल अप कर दें अभी भी आपके साथ हम बात कर सकते हैं लेकिन उन्होंने इसका कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया वो चाहते नहीं थे कि मुल्क में अमन का इस जत्थे से लॉन्ग मार्च से जो इस्लामाबाद आके आना चाहते हैं और उस एक भयानक वो यादों को ताजा करना चाहते हैं जब कपड़े टांगे होते थे डी चौक में और क्या कुछ तमाशा कब्रें खोदनी और आजाद मुल्क पाकिस्तान का दोबारा हाशर नशर करना चाहते हैं क्या पाकिस्तान को दोबारा आप तबाही के दाने पर लेकर पाकिस्तान के साथ ये दुश्मनी करना चाहते हैं मैं समझता हूँ इससे ज्यादा मुल्क दुश्मनी की और कोई हरकत हो नहीं सकती बिल्कुल क्या आप खामोश तमाशाई बनेंगे और बैठे रहेंगे ये नहीं होगा कानून अपना रास्ता अपनाएगा और हर चूक अपनाएगा इंशाल्लाह ये मैं नहीं होने दूंगा
5: छा मुल्क दुश्मन इतने खामोश तमाशाई थी वेही रहंदासीं एक जत्थो इस्लामाबाद अची पाकिस्तान के बीहर तबाही के किनारे ते पहुंचाइण चाहे थो पाकिस्तान के नुकसान रसाइण वारे हर कोशिश के नाकाम बणाईंदासीं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जे वफ़ाक़ी काबिना जे इजलास के खिताब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त छा ही घड़ी घड़ी पंहिंजी रांदि रजाइण चाहिनि था इस्लामाबाद ते ॿीहर चढ़ाई जो मनसूबो जोड़ियो वियो आहे ईअं न थींदो ऐं कानून पंहिंजो रस्तो अख़्तियार कंदो के पी हुकूमत दहशतगर्दी ख़िलाफ़ वफ़ाक सां सहकार करण में तयार न आहे दहशतगर्दी ख़िलाफ़ हिकु लफ़्ज़ बि न पिया ॻाल्हाइनि के पी जो वॾो वज़ीर मुल्क में मुआशी बहितरी नथो चाहे सदारती हुकुमनामे बाद के पी जे सूबाई हुकूमत गैर फाल थी वई गवर्नर फैसल करीम कुंडी सूबे जो इंतज़ाम संभाले वरितो 11 रुकनी काउंसिल गवर्नर जे मुअंत कंदी कानून वारे वज़ीर आज़म नज़ीर ताज वफ़ाक़ी वज़ीरनि सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त अॼु सदर आसिफ अली ज़रदारी आइन मुताबिक़ के पी में इमरजेंसी लॻाई आहे के पी में दहशतगर्दी ऐं इंतिहा पसंदी में 200 सैकड़ो इज़ाफ़ी थी वियो आहे अहिड़ा क़दम ख़ुशी सां नाइन खया वेंदा पर आवाम जे जान माल जी हिफ़ाज़त ज़रूरी आहे गवर्नर के पी सूबे बाबति वफ़ाक़ सां ख़दशनि जो इज़हार कयो हो घर वज़ीर मोहसिन नक़वी चयो त हिकु महीने खां सूबे हुकूमत खे आन बोर्ड आणण लाइ कोशिशूं कंदा रहियासीं पीटीआई दहशतगर्दी जे राब्तनि में को बि शक न आहे धरणो को मसलो न हो असुल मसलो दहशतगर्दी आहे लॉन्ग मार्च खां अॻु पीटीआई जे केतिरनि ई मुतालबनि ते अॻुभराई थी पीटीआई ॻाल्हियूं मञे हा त अहिड़ी सूरत न हुजे हा एमरजेंसी जो फ़ैसिलो मजबूरी में कयो आहे सूबे में गवर्नर राज एमरजेंसी नाफिज़ थियण बैदि गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी एडमिनिस्ट्रेटर तौर ज़िमेवारियूं संभाले वरितियूं वफ़ाक़ी हुकूमत के पी में 11 रुकनी सलाहकारी काउंसिल क़ाइमु करे छॾी कानून काउंसिल सूबे जो इंतज़ाम हलाईंदी काउंसिल मेंबरनि खे खाता बि अलाट कया विया डॉक्टर सैयद आमिर अब्दुल्ला खे तइलीम तारिक महमूद पाशा फिनांस एक्साइज रेवेन्यू जो सलाहकार मुक़ररु उस्मान सैफुल्ला ख़ान तवानाई मनसूबाबंदी ऐं तरक़ियाती वारनि खातनि जो सलाहकार मुक़ररु आमिर जावेद कानून ऐं पार्लियामानी मामलनि जो सलाहकार हूंदो समर हारून खे सिद समा वारे खातो ऐं डॉक्टर मोहम्मद अरशाद सनत वारे खाते जो सलाहकार मुक़ररु मौलाना मोहम्मद तैब कुरैशी औकाफ़ ऐं मज़हबी मामलनि बाबति सलाहकार मुक़ररु लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड निगार जौहर ख़ान सिहत खाते जी सलाहकार हूंदी किफ़ायतुल्ला ख़ान खे घरू ऐं ट्राइबल अफेयर्स जो सलाहकार मुक़ररु कयो वियो आसिफ़ रफ़ीक़ आफ़रीदी कम्यूनिकेशन वर्कस लोकल गवर्नमेंट हाउस हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट जो सलाहकार हूंदो डॉक्टर सरफराज अली शाह माइनर माइंस एंड मिनरल्स जो सलाहकार हूंदो।

0: कंदे मौलाना फजल रहमान चयो त हुन फैसले खिलाफ अवाम सां राबतो कंदा। पार्लियामेंट जे अंदर ऐं ॿाहिरि पंहिंजो किरदार अदा कंदासीं। वज़ीर आज़म कुझु ॻाल्हियुनि ते इतफ़ाक़ कयो हो, पर बाद में हुकूमत वई। पीटीआई केपी में एमरजेंसी खे रद्द करे छॾियो। पीटीआई चेयरमैन भरत गौर चयो आहे त केपी में एमरजेंसी जो फैसलो वॾे सियासी ग़लती ऐं गैर जमहूरी क़दम आहे। केपी जो अवाम पंहिंजे हक़नि ख़िलाफ़ अहिड़ा क़दम कॾहिं बि क़बूल न कंदो। सदन मेडिटेट कानूनी आइनी हक़ आहे। सूबे ख़ुदमुख़्तियारी रद्द करण ऐं वफ़ाक़ ऐं सूबे विच में टकराव पैदा करण सां न अमून थींदो ऐं न इस्तेकाम। सूबनि खे कमज़ोर करे वफ़ाक़ खे मज़बूत नथो करे सघे। मसलनि जो हल ताक़त सां न पर आइन जे बलादस्ती में आहे। केपी जे अवाम जे हक़नि लाइ हर जमहूरी फोरम ते आवाज़ उथारींदासीं।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: Brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। आप प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
4: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
5: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़। बुधंदा रहो।
6: तालीमुल कुरान, कुरान मजीद के लफ्जी तर्जमा और तफसीर पर मुबनी प्रोग्राम।

0: कर रहा है डॉक्टर फरहत हाशमी।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हमल च एह कढ़ी मूं वेही कयो वीचार हमल च एह कढ़ी मूं वेही कयो वीचार त दिल लॻी दोस्तीअ जो छा मुल आहे मिक़दार त अंदर मां अकुल चयो निकितो ही निरवार लॻे त लख हज़ार जे टुटे त टको ई न लहे अस्सलाम वालेकुम समईन जी एफ एम 88.8 रेडियो लाड़काणे जो आवाज़ ऐं मां जो मेज़बान नेमत अलाह जून जो अव्हां जी ख़िदमत में हाज़िर ऐं क़बूल पवे सिक भरियो सलाम।

जी समय ने केड़ल न मजा खुश आयो ठीक आयो चाक चंगा भला असां जी हर पल हमेशा अवां प्यारन सजनन लाए इहा दुआ हुंदी आए त जिते बुजो खुश जो कदें दुखियो दीन दिसो ऐं सदाई गुलाब जे गुलन जिया खिलंदा मुस्करंदा रहो आमीन।

ऐं समय न मूंखे ॿुधाईंदो हलां त अॼु सूमर जो ॾींहुं आहे ऐं अक्टूबर महीने जी 12 तारीख़ आहे 2026 ईस्वी सन ऐं रबी सानी महीने जी 29 तारीख़ आहे 1448 ईस्वी सन।

समय न मां खे ॿुधाईंदो हलां त अॼु जी जेको प्रोग्राम जो निचूर आहे असांजे अॼु जे प्रोग्राम जेके सिलसिला आहिनि उन में अवां खे चूंड मौसीकी बि मिलंदी, अवां सां गुफ़्तगू कंदासीं मुख़्तलिफ़ मौज़ूअनि ते, ऐं अॼु जो सवाल जेको आहे अवां खे नोट कराईंदासीं। त अॼु जो सवाल तव्हां खे ॿीहर बि नोट कराईंदासीं, असां हिन वक़्तु नोट करायूं पिया त पाकिस्तान जी वॾे में वॾी कोर्ट जो नालो अव्हां खे ॿुधाइणो आहे। जी हा, सवाल तमामु आसान आहे ऐं अव्हां जे पंहिंजो उन कोशिश सां जेको तव्हां चवंदा असांखे सवाल ॾुखियो न हुजे ऐं सवाल सहजो हुजे, त उन में अव्हां खे इहो नोट करायूं था त सवाल तमामु आसान आहे त पाकिस्तान जी वॾे में वॾी जेका कोर्ट आहे उहा कहिड़ी आहे। त जी हा समिन, तव्हां असांखे नोट कराए सघो था, असांखे सवाल जो सही जवाब मोकिले सघो था। असांजे SMS ज़रिए मैसेज करण जो तमामु आसान तरीक़ो आहे। मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वेंदव, तव्हां उते LRK लिखी, यानी लाड़काना LRK लिखी, तव्हां स्पेस ॾेई पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ जो नालो ऐं सही जवाब लिखी करे तव्हां सेंड कंदव 8881 ते। ऐं समय असांजी GFM88 जी आईडी आहे, फेसबुक जी असांजो फेसबुक जो पेज आहे, तव्हां उन ते बि असांखे सवाल जो सही जवाब मोकिले सघो था। ऐं असांजे स्टूडियो में लाइव कॉल बि हूंदी आहे, मोबाइल फोन ऑन कंदा आहियूं 10 बजे, तव्हां 10 बजे असांजे फोन कॉल ते बि पंहिंजा सही जवाब जेको आहे सो मोकिले सघो था, नाला लिखाए सघो था। असांजो नंबर आहे 0332-1322-88। त साईं मुंहिंजा, असांजो अॼु जो सवाल आहे पाकिस्तान जी वॾे में वॾी कोर्ट कहिड़ी आहे, उन जो अव्हां खे नालो ॿुधाइणो आहे। ऐं साईं मुंहिंजा, हिन धरतीअ ते किरोड़े इंसान आया ऐं किरोड़े इंसान हलिया विया, कुदरत जो इहो सिलसिलो

जी असां प्रोग्राम रोशन सुबुह ॿुधो पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क आहे ऐं तव्हांजो असांजो साथ रहंदो ठीक 11 वॻे ताईं ऐं तव्हां असां सां गॾु जुड़ियो हिन तरह पिया कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़।

0: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए. आर्श ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्श ब्यूटी क्रीम.
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज.
2: GAFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज.
4: छा तव्हांजो ख़्वाबु आहे डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी, नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बणजण, त पोइ तव्हां लाइ आहे हिकु बहितरीन मौक़ो. सखर जो मौत
5: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर. GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़.

0: अक्सर मस्त धरती
1: फातिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
0: GAFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।
2: अजी समय प्रोग्राम है रोशन सुबह रोशन सुबह प्रोग्राम बुध पे GAFM 88 के नेटवर्क ता जिमें सखर लाड़काणो मीरपुर खास मोरो मेरापुर मटियारी मातली सकरन स्टेशन तुम प्रोग्राम बुध पाया जो मेजबान नेमतुल्लाह जुणे जो सही चवन्दा त किस्मत ते कंहिंजो बस न हलंदो ऐं असांखे ख़बर ई न आहे त सुभाणे किस्मत असांजे झोली में छा विझंदी गुल हूंदा या कंडा कंहिंखे कहिड़ी ख़बर कॾहिं किथे ईअं बि थींदो आहे जो असांजो पंहिंजो समूरो जीवन ऐं ज़िंदगी जो समूरो सफ़र कंहिंखे अर्पे छॾींदा आहियूं ऐं वफ़ाउनि जा वाइदा कंदा आहियूं असीं हिक ॿिए खे सुंदर सपननि जूं सॾु आहियूं ऐं असीं हिक ॿिए खे रोशनी ॾींदा आहियूं ऐं उहा रोशनी हर इंसान खे जीअण जो अहसास ॾींदी आहे जेको अहसास हक़ीक़ी मंज़िल ते चाहींदो आहे ऐं समुझा जॾहिं इश्क अची अंदर में देरो जमाईंदो आहे तॾहिं सभु उमेदूं पूरियूं थींदे नज़र ईंदियूं आहिनि छो त इश्क उन्हनि वटि ई महिमान थी ईंदो आहे जिन जो मन सागर खां बि वॾो गहिरो हूंदो आहे।

0: Jeona.
1: Hello guys, welcome back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुजार है और मुझे कहते हैं आज ये रुखसार आपको मेरे साथ पूरी पूरी 1 बजे तक का है और जिंदगी गुजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स और सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय अक्सर कॉस्मेटिक्स और वो तमाम तो लोग जो कि जिनको नहीं मिल रहे हैं सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स तो वो हेल्पलाइन नंबर नोट डाउन करेंगे. हेल्पलाइन नंबर है जी 03147544626 सखर और लाड़काना वालों के लिए. ठीक है, तो आप लोग इस पे एटलीस्ट कॉल करेंगे. ठीक है, तो कॉल जरूर कीजिएगा. प्रोडक्ट्स से रिलेटेड कोई भी मालूम चाहिए हो आपको तो बिल्कुल हेल्पलाइन नंबर पे आपको मिलेगी एंड आप शो का फीडबैक भी इस हेल्पलाइन नंबर पे दे सकते हैं. इसके अलावा जो हैदराबाद वालों के लिए हेल्पलाइन नंबर है वो है 03702568321. ठीक है, ये दोनों हेल्पलाइन नंबर है जिनको आप लोग डायल कर सकते हैं और सुबह आके प्रोडक्ट जहां जहां पे नहीं मिलते हैं अवेलेबल नहीं है वहां वहां पे अवेलेबल करवाएंगे एंड देन आपको मिल जाएंगे. सो सुपर वाइट के फॉर्मूलाज तैयार करने के लिए आप लोगों को चाहिए सुपर वाइट के ब्यूटी क्रीम्स. सुपर वाइट का एक और फॉर्मूला जो कि आप लोग तैयार कर सकते हैं. सो आप लोगों ने लेनी है एक बार सुपर वाइट ऑयल कंट्रोल क्रीम एंड देन उसके साथ आप लोगों ने लेनी है सुपर वाइट एंटी एक्नी क्रीम एंड उसके साथ लेना है सुपर वाइट का ब्यूटी सीरम बूस्टर. ठीक है, आप लोग इन तीनों चीजों को जो है एक जार में ऐड कर लेंगे. ऐड करने के बाद तीनों चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और जब आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे देन आप इसको इतना मिक्स करें कि ये आप मतलब कि एक जान हो जाए एंड देन आपने इनको स्टोर करना है. स्टोर करने के बाद रख लेना है स्टोर करके. रात को सोने से पहले आप इसको अप्लाई करेंगे लेकिन उससे पहले फेस को वॉश करेंगे सुपर वाइट ऑयल कंट्रोल फेस वॉश से. सुपर वाइट ऑयल कंट्रोल फेस वॉश से फेस को वॉश करने के बाद ये फॉर्मूला अपने फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे एंड कुछ ही दिन में पहले भी 3 दिन में वाजे फर्क आप लोगों को देखने को मिलेगा. ठीक है, स्किन डल है, स्किन डार्क है, स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन है, ऑयल बहुत ज्यादा आ रहा है आजकल स्किन के ऊपर. जो ऑयल आ जाता है अगर आप बाहर जाते हैं पोल्यूशन डस्ट की वजह से ऑयल फ्री स्किन नहीं रह पाती आप लोगों की. ऑयल बहुत ज्यादा आता है स्किन के ऊपर तो स्किन से ऑयल को खत्म करने के लिए या फिर कम करने के लिए आप लोग यूज करेंगे इस फॉर्मूले को. और अगर फेस के ऊपर एक्नी है एक्नी को खत्म करेगा, पिगमेंटेशन को खत्म करेगा, आपके डाउन कॉम्प्लेक्शन को फेयर करेगा. सबसे बड़ी बात फेयरनेस ब्राइटन अप स्किन होगी और आप देखेंगे पहले ही 3 दिन में इससे वाजे फर्क आपको मिलेंगे नजर आएंगे. ठीक है, साथ साथ कमेंट्स को एंटरटेन करेंगे जी एंड कमेंट्स को हम एंटरटेन करेंगे एक गाने के साथ और वो गाना मुझे अभी अभी नजर आया था एंड मैं कोशिश करूंगी कि वो मुझे दोबारा से नजर आ जाए और फिर उसको हम प्ले करें.

que इस गाने के साथ हम कमेंट्स और मैसेजेस को इंक्लूड करेंगे। तो जी हमें कमेंट किया है नियाज मोहम्मद भट्टी ने, कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सिस्टर मटियावी से कॉल मिला मिलाकर आंखें दुख रही हैं। स्माइल किशोर कह रहे हैं कॉल मिला मिलाकर आंखें दुख रही हैं। आगे है गुरूर वाला इमोजी, गुरूर नहीं करना चाहिए, बहुत बुरी बात है, मगरूरी इंसान को ले डूबती है, वेरी बैड। और इसी के बाद उन्होंने कमेंट किया है ओके सिस टीसी बाय, गुस्सा गुस्सा। अच्छा अच्छा, स्माइल किशोर कहते हैं कि अरे इस तोते की चोंच पहले भी टूट चुकी है, सही से नहीं टूटी थी, दोबारा तोड़ेंगे, ठीक है। हाफिज यूनुस बाबर हमें सुन रहे हैं, शो नाइस है। वफा मुमताज खोसो हमें सुन रहे हैं, सैयद भनी बख्श हमें सुन रहे हैं और प्रोग्राम इंजॉय कर रहे हैं।

0: अच्छा कॉलर है लाइन पे मेरे साथ, हेलो।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
1: मोरो खान जहरी, मोरो से।
0: मोरो से पहली दफा कॉल कर रहे?
1: जी बाजी जी, प्रोग्राम लग गई थी लेकिन आपने अटेंड नहीं की।
0: चलें अब लग गई है, वेलकम टू द शो। और मुझे बताएं प्रोग्राम कब से सुन रहे हैं
1: आप? पहली मरतबा सुन रहा हूँ लेकिन ये शो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी कंपनी है आपकी, बहुत अच्छा प्रोग्राम है।
0: थैंक यू सो मच। और ये प्रोग्राम किसके तामुन से है ये सुना आपने?
1: नहीं अभी बाजी पता।
0: चले आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा, मैं बता भी देती
1: हूँ। नुसरत फतेहली का सुनाएगा?
0: मैं बिल्कुल, नुसरत फतेहली का अभी हमने प्ले किया था और उसके बाद हमने नेक्स्ट प्ले किया है। चले मैं फिर भी लगा दूंगी, मुझे बताएं और कुछ कहेंगे।
1: मेहरबानी बाजी आपकी, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम।
0: थैंक यू सो मच, बड़ी नवाजिश।

song aur song ke saath saath program ka time bhi bahut limited hai aur taqreeban khatam ho chuka hai ji and isi ke saath hum finally lenge aapse ijazat aur inshaallah meri aapse chit chat hogi ab kal on same time same channel same show with the same RJ suna mat bhuliyega zindagi gulzar hai apna bahut sara khayal rakhiyega aur jaati jaati wahi baat ke khwab dekhne ke liye सोना जरूरी है ख्वाब पूरे करने के लिए जागना इससे ज्यादा जरूरी होता है लिसन टू द थिंक हाय सो दिस इज मी आरजे रुखसार साइन आउट टेक केयर गुड बाय बामानी खुदा अल्लाह हाफिज़

0: शाह लतीफ का सूफी ठिक।
1: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
3: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
4: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
5: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
6: Brought to you by
7: Super White Rice Collagen Beauty Cream.

डेढ़ लाख बरकरार कतरी साल से भी अगबराई कर न सकी। आपने अर्ज में तेल बरदार बेड़न ते हमला जारी। अमरीका भी तहरान के बहरी नाकाबंदी वधीक सख्त करे छी। ईरान सत शर्तन ते अमरीकी जवाब के नाकाफी करार दई छो। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह मोहसन रज़ाई है तो अमरीका सत शर्तन में कुछ के कबूल किया है। वाशिंगटन जो मजमू जवाब तहरान लाय नाकाफी है।

केपीके में सिक्योरिटी फोर्सेज जो खारजी दहशतगर्द के खिलाफ कार्रवाई जारी बनून में फोर्सेज जो ऑपरेशन एक खारजी दहशतगर्द मारजी वो सिक्योरिटी जरिए मौजूद बनून में गुजी इतलाते दहशतगर्दन खिलाफ कार्रवाई कई वही दहशतगर्दन की चुरपुर भी नजर आ।

फिरियालो जे कचे में माउ ऐं धीउ क़त्ल फैज़ मोहम्मद बिंडो थाणे जे हद ॻोठ बुरड़ा नारे जो में हथियार बंदन सनम ज़ाल एतबार नारे जो ऐं संदसि धीउ सलमा खे क़त्ल कयो। पुलिस जो चवण आहे त मक़तूला सनम नारे जो ते संदसि मुड़ुस एतबार नारे जे क़त्ल जो इल्ज़ाम हो। वाके बाद

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
3: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
5: सुपर वाइट।
6: खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी हाणे अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुबतला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बि हिकु दफ़ो आज़माए ॾिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम आई डी है हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।
7: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, बुधंदा रहो।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

करते हैं और ढेर सारी बातों में जाहिर सी बात है आप लोगों के साथ फन करेंगे, आप लोगों को मजे मजे के गाने सुनाएंगे, आप लोगों के मैसेजेस होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर प्रोग्राम में एंटरटेनमेंट होगी जनाब वो भी रज के, और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी खूबसूरत लोग हमारे साथ मौजूद हैं तमाम तो लोगों को वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। साथ ही साथ अपना भी तारीफ करवाते हैं टू लिसनर्स फॉर प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान नाम से सुनाई होगा। तो बिल्कुल आओगी सिद्रा ही जनाब आप लोगों के साथ साथ, मेरे साथ कौन है मुझे बताइए और अपने होने का एहसास दिलाइए, आप जिंदा है मुझे पता होना चाहिए, इसी के साथ साथ अपने हाल चाल भी बताते चाहिए। सो डियर लिसनर्स अंत की फहालत कैसे ही आपकी हालत उम्मीदन शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सबकुल मूड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है और फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली। आपको पता है ना जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे आपका हमारा साथ पूरे पूरे 3 बजे तक का। और यहाँ पर आप जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रही थी, ऐसी बहुत सारी अंटियां अमियाएं खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान। तो भाई अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वेल गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके होंठों पर 440 उल्के इस्तेमाल लाने का काम करेगी भाई साहब ये सिद्रा। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्के इस्तेमाल लाते हूँ, यहाँ पर ऐसा करते आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। आगे से प्रोग्राम किया जाएगा जनाब एक बहुत ही ब्यूटीफुल से कलाम के साथ। तो बहुत प्यारे से कलाम हम आप लोगों के साथ सुन लेते हैं जो कि ज़ैन और ज़ुहैब की आवाज में होने वाला है। आप लोग हमारे साथ मौजूद रहिएगा और सुनते रहिएगा पूरे पूरे 3 बजे तक प्रोग्राम वाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट। लगाइए और आप भी खूबसूरत हो जाइए।

ख़ूबसूरती जो असल सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्किन को हर डी बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

कैसे बनेंगे बताते हैं ना। अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK, सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। उनके अलावा अगर तासंगे फेसबुक पे बुधन चाहियो था तो जी लाडकाना FM 88.8 असान जो पेज है जनाब फेसबुक जो आई जदी तां सर्च करना जी लाडकाना FM 88.8 तो तमाके असान जो पेज आराम से मिली वेदो। पेज ते अचो बाबा, पेज ते तांके सांजी प्रोग्राम जी ना लाइव पोस्ट मिली वेनी जेके तमा लाइक कंदा, कमेंट कंदा आई शेयर करे सडीदा। पोस्ट के लाइक, कमेंट एंड शेयर ये ट्राई चीजों कंदा कयो, हिकड़ी भी अगर इन में चीज ता स्किप कई ना वो खुद की दीनी मावा। पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, दोस्तों को मेंशन कीजिए और सबको बताइए जनाब कि मार्केट में डी स्किन ब्यूटी क्रीम आ चुकी है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आ चुकी है तो छा चुकी है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का ये कमाल हो चुका है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप सब लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को आप सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप मर्द हजरात हैं, खवातीन हैं, या फिर ऐसा वाला सीन है कि भाई आप लोगों की स्किन खराब है, सेंसिटिव स्किन है, कॉम्बिनेशन टाइप है, या आप ऐसा वाला सीन है कि कोई भी प्रोडक्ट जल्दी में लगा नहीं पाते, ट्रस्ट नहीं हो पाता आप लोगों से कि भाई आपने बहुत सारे प्रोडक्ट लगाए, बहुत सारे धोखे खा लिए हैं, लेकिन ऐसा है कि अब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम पर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये प्रॉपर इस तरह से तैयार रखी गई है कि आपकी हर स्किन के ऊपर ये फिट हो जाएगी। क्योंकि सबसे बेहतरीन बात कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है, यानी कि ऐसे आपकी स्किन से रिलेटेड जितने डॉक्टर्स होते हैं ना उन्होंने मिलकर ये फार्मूला ईजाद किया है, तो अब आपकी बारी है कि आप इस्तेमाल करके देखिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये 2-in-1 फार्मूला भी है, यानी कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ऐसे जैसे आपने कोई फेशियल कराया हो। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें जो आप लोगों को बतानी है मैंने, लेकिन ये वाली बात भी है जो कि अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारे करीबी जनरल स्टोर्स के ऊपर भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल होनी चाहिए, आप किसी गांव से ताल्लुक है, आपका किसी सिटी से आपका ताल्लुक है, आपके यहाँ अभी तक डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं पहुंचे हैं, नहीं मिल रहे, तो आपको नंबर्स बता रही हूँ उनके ऊपर रब्ता कीजिए और जल्दी से अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल कराइए और डायल कीजिए 03-12-50-25-907 बुढ़ी 312 50 970 ऐं ॿियो नंबर आहे 03-27-38-43-09 बुढ़ी 332 73-84-309 ही ॿई नंबर्स आहिनि जेके तव्हां डायल करे पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से, दुनिया जे कहिड़े ही बि कोने में मौजूद आहे बाबा, तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे अवेलेबल करायो। अवेलेबल कराइण सां तव्हांखे फ़ाइदो मिलंदो, त तव्हां बस वेंदा ऐं परचेस करे ईंदा छा डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन जो फेस वॉश। वञो जल्दी जल्दी अवेलेबल करायो ऐं परचेस करे अचो, मूंखे ॿुधायो त तव्हां बि इस्तेमाल कई आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम। ऐं तव्हांखे सवाल जो जवाब ॾियणो आहे त अगरि तव्हांजे घर जूं दीवारूं जेके आहिनि, भितियूं जेके आहिनि, उहे ॻाल्हाइण स्टार्ट कनि, त बाबा ॿुधायो मूंखे हाल अहिवाल तव्हांजे घर जो छा सीन हुजे। ये जो आप बैठ कर कुंडन कुंडन में वेही करे माण्हुनि जो गिलाऊं कंदा आहियो न, पोइ ख़बर पए वा तव्हांखे, हाणे ॿुधायो मूंखे। सो तव्हां जल्दी असांजी पोस्ट खे लाइक एंड शेयर कंदा हलो, हिते तव्हां सां गॾु मौजूद आहे, तव्हांजा फीडबैक आहे। सभ खां पहिरीं अगरि असां ॾिसूं था त असां कॉमेंट मिलियो आहे तारिक भाई जो, तारिक भाई सबसे पहले हमारी पोस्ट पर मौजूद, कहते अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम तारिक भाई, कहते हमारे बहुत अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर हैं अब्दुल रहमान बाबू भाई, पीर जो वोट में अच्छा हमारा शो सुनते हैं।

ना कमल जी कहते कि मुस्कुराओ की जिंदगी भी बाकी है, हाओ बाबा मुस्कुरायूं तहां भी मुस्कुरायो। अब्दुल गफार भाई वालेकुम अस्सलाम, तहां के चंदा भली करी आया मेल से तहां से ज्वाइन कयो आहे, वाह साईं वाह खुश आमदीद। अच्छा राजा रऊफ अबरू हमारे साथी वालेकुम अस्सलाम कहते आरजे साहिबा केड़ा हाल आहिन, दुआ आहे हमेशा सलामत हो जो शो वेरी वेरी नाइस। थैंक यू सो मच रऊफ तमा से सगर मौजूद आयो बाबा असने प्रोग्राम में तमा शामिल आयो, सो तमा के चौंता भली करी आया। और मोहम्मद जमान में सुन रही है गुड आफ्टरनून एंड वेलकम आई स्वीट बुआ जी ऑसम शो, थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई। कामरान खान हमारे साथ है कहते नाइस यू, थैंक यू। अली रजा लगारी गोठ जाम खान लगारी से कहते सिस्टर सिदरा अस्सलाम वालेकुम कैसी है, शो तमाम नाइस है। पत्थर आ जिगर तू प्यार मां छा जाने भाई सरमन सिंधी मां कोशिश कयां थी तवाजा दुखिया दुखिया गाना हलाइण डेडिकेट। अजहर लगारी आकिब लगारी आरजे गुलाम मुस्तफा चालपुर इमाम बख्श खोखर सिस्टर डी स्किन ब्यूटी क्रीम बहुत कमाल की है और सब हम डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में सब पूछते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में हमसे क्या बात है, जिनको बताया करें कि आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर चुके हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम कितनी कमाल की है ये भी उनको बताया करें। और एसन आरबाणी की थी अस्सलाम वालेकुम मौलाना इस्लाम अदद, ओ माय फेवरेट आरजे मैडम मुस्कान जी कैसी आप, तबियत मूड वगैरह ठीक ठाक है ना, मैं भी आ गया ब्यूटिफुल शो में, मौसम भी आज प्यारा है। हाँ भाई आज मौसम की वाकई क्या बात करें, मौसम इधर का भी बड़ा अच्छा हो रखा है, बस बारिश हो जाए थोड़ी थोड़ी सी तो मजा ही आ जाएगा, पैसा वसूल सीन हो जाएगा। अल्लाह किशोर भाई कहते हैं कि आऊं हमेशा पंहिंजी कीमत ठाहिण जी कोशिश कंदो आहियां, छो त अगर मखी चांहि में किरे त माण्हू चांहि उछलींदा आहिनि, अगर हूअ ई मखी गीह में किरे त असां मखी उछलींदा आहियूं। सलाम अदा किशोर इज हेयर डोंट गो एनी वेयर ओके, तव्हांजो मोहबतू प्यारा सोना भात आसे से गॾु मौजूद आयो। गदा हुसैन मल्हा आ चुके कहते हैं अचबो त जिगर शेर जो धारे अचबो, हर एडियूं डुखियूं डुखियूं शायरी मोकिले छॾी आयो कहते बाजे कैसी हो भाई किशोर कुमार को सलाम और दर्दी दिल को भी। गदा हुसैन मल्हा डेडिकेट मोहम्मद बख्श मल्हा विलेज आंदल खान मल्हा ओके जी, तव्हां भाइरनि जूं मोहबतूं आहिनि तव्हां प्रोग्राम में शामिल आहियो, वासु भाई तव्हांजो बि मोहबतूं आहिनि प्रोग्राम में शामिल आहियो, पोस्ट खे लाइक शेयर कंदा हलो, टॉपिक खे फॉलो कंदा हलो। हिते टाइम थियो आहे बाबा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं था, वापसी जल्दी मोटी तव्हां ॾींदासीं, तव्हां गॾु न वञिजो, हिते वेठा हुजो, ओ हीअं मोटूं था, सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटेश एंड डी इज कंप्यूटिंग शो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GAFM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश तव्हां लॻाईंदा रहो ऐं पंहिंजे ख़ूबसूरती खे वधाईंदा रहो. अगर जी अगर आप भी अपने करीबी जनरल स्टोर्स के ऊपर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराने वाले हैं तो जल्दी से नंबर्स को नोट कीजिए और नंबर्स के ऊपर राबता करते रहिए, क्योंकि जब आप नंबर्स के ऊपर राबता करेंगे ना तो ये आसानी हो जाएगी कि बस आप जाएंगे और परचेज करके आएंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश. तो डायल कीजिए 0332738439. बुड़ी 300 है 73 84 309 नंबर आहे 03-1250-25907 बड़ी 300 12-50-25-907 डायल करे पांजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश के अवेलेबल कराए सको था. आसानी थी वेंदी बाबा तव्हांजे लाइ अवेलेबल करायो ऐं सोणा थी वञो.

सुनने वाली समातों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। साथ ही साथ मैंने जो आज आप लोगों से सवाल पूछा है उसका जवाब बताते जाइए और मुझे बताइए कि अगर घर की दीवारें बोलना स्टार्ट कर ले तो फिर आप मुझे बताएं कि आपके घर का माहौल कैसा हो जाएगा, क्योंकि भाई मुझे पता है कि आप लोगों के पास अच्छे अच्छे जवाब होने वाले इस सवाल के, तो मुझे जवाब चाहिए और आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन

जल्दी से आपके मैसेजेस मुझे ओके जी मिलती जा रही है और आप अपना फीडबैक जो है वो मुझे सेंड करती जाइए. बाकी साकेती ज्वाइन किया है अलीशा, लिखती है कि होंगे लोग दुनिया में और भी हसीन मगर साईं मेरे लिए कोई भी शख्स आप जैसा नहीं हो सकता. साईं क्या बात है आपकी तो. और लिखती है कि वो जो मुझे देखकर हंसे पाना चाहो रात दिन जैसे. वाह वाह वाह वाह. किशोर भाई कहते हैं कि अदा अगर दीवार हो गालहाइन त फसाद ही छो थियन छो न थियन फसाद त थींदा न. कहते दीवारूं त सिर्फ़ घर जा पोल पधरा कंदियूं सोच अगर मोबाइल गालाए त. इहो बि मां सोचो हुयो पर पहिरियां इहो ॿुधाए त दीवार गालाए त छा थींदो. अलीशा कहती है कि तुम्हें देखा तो यू देखा मुसविर हो गई आंखें. अरे वाह. और चाचा खालिद आ चुके हैं. वालेकुम अस्सलाम बेटा हाउ आर यू. हो फाइन. यस आई एम फाइन. आप बताएं कैसे हैं. रेहाना खान हमें सुन रही हैं. रेहाना खान बखर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं. रेहाना खान बखर से हमें सुन रही हैं तो आपको भी वेलकम एंड खुशामदीद. आप भी डीज कन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकती हैं रेहाना जी. नजीर खोसो भाई बलोचिस्तान से हमें ज्वाइन कर चुके हैं. लिखते हैं कि नींद में तो तुम अपने आप को भी भूल जाते हो फिर वो कौन है जो तुम्हारी हिफाजत करता है. बेशक वो तुम्हारा रब है. बेशक बेशक. अबू हनीफ अलबलोची हमें सुन रहे कहते हैं कि तेरे साए में खड़ा शख्स गिराएगा तुझे. मैंने ये बात भी दीवार को समझाई थी. अरे वाह क्या बात हो गया. मोहम्मद जमान कहते हैं अल्लाह पाक जा गरम जो ही दी स्किन ब्यूटी क्रीम आयू जो चेहरो चिटो थियो न त बॉयज को. हाँ भाई ये बात बिल्कुल आपने सही कर दी है वरना बेचारा छोकरन जो चाहते हो छोकरन जलाइए हूं तो वो बेचारा परेशान होना था. बाबा हाँ अस क्यों अजकल वे छोकर के नौ क्रेज चढ़ो है तो बाबा वन सेलोन से मल सल लगाई पी फेशियल सी इन चीजों का थोड़ा अवॉइड कर बबा ये तवाजी स्किन जो सेफ ना होंदू तुम कोई सुठो कोई मतलब जो सुठो प्रोडक्ट हुए जो तुम पा पे हथन से लगाओ अलह कड़ा कड़ा प्रोडक्ट तेजे चेहरे से लगाण शुरू क्या है. इन चीजों का बचो बबा ये अच्छी आदतें नहीं होती है. तुम घर वेठे पांजे चेहरे के सफा अड़ो निखार दई सो जन तुम महंगो फेशियल कराया है तो मल सल का पान के बचाओ डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर. ये हमारे साथ एक गुड आफ्टरनून. हेलो आरजे सदरा मुस्कान जी आप कैसी हैं. योर शो इज वेरी नाइस. दिस इज अल्ताफ अली गादी बलोच फ्रॉम कराची. ओके जी आपको वेलकम हो गया. चाचा कहते हैं कि दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है. योर टॉपिक एंसर सच में आप दीवारों से बातें करते हैं. अरे वाह चाचे की तो क्या ही बात है भाई. चले यहाँ पर और जी हमारे साथ है वहीद वफाई. वालेकुम अस्सलाम जी मैं ठीक हूँ. आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है. जेकब आबाद से आप हमारे साथ मौजूद हैं क्या बात है. और फहीम भाई कहते हैं कि टॉपिक कोई राज राज नहीं रहता. बीवी कहती मेहमान के सामने इज्जत रखना और दीवार फौरन बोल देती झूठ बोल रहा है. कल रात तो इसी मेहमान की बुराई कर रहे थे. बिल्कुल यह गाल सो घर में किडा फसाद थी वने ना अगर ये ही दीवारों गालाने स्टार्ट करना था. हिदायतला कहते हैं कैसी हो मुस्कान ये सॉन्ग है. अच्छा मैं बिल्कुल तवा जो गानो हलाया थी तवा लिंक ऑलरेडी शेयर करी छड़ी आए. वासु भाई कहते हैं अदी सरो जवाब पूरा बडी हां घर जो माहौल विनायल हुंदो. अदी डिठो वने त जिते किथे भितिन जा कन भरल आयन कसम सा. बिल्कुल यही गाल है. और चाचा कहते हैं गर्मी कराची में बहुत है. सच में कराची में गर्मी है भाई. आज इधर माहौल थोड़ा मुझे लग रहा है कि सही है क्योंकि हल्का हल्का जो है ना वो क्लाउडी वेदर है तो थोड़ी गर्मी की शिद्दत जो है ना वो कम हो चुकी है. बाकी तो सब फर्स्ट क्लास है. आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा रहे हैं खूबसूरत होते जा रहे हैं और अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल भी कराते जा रहे हैं. आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. लगाइए और खूबसूरत हो जाइए.

ओके तो क्या बारे बहुत ही प्यारा सा गाना एंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं वाई जयेश एंड डी इन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से, तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करते रहिए और प्यारे प्यारे होते जाइए। अच्छा, दर्दे दिल हमारे साथ मौजूद है, कहती है सलाम सलाम, गुड आफ्टरनून माय बेस्ट ब्यूटीफुल आरजे सिद्रा चंदा जानी, कैसी हो, वेलकम टू शो। मैं भी आ गई शो में, वेलकम तो बनता है जी जी जानी, आपको वेलकम कहते हैं। और लिखती हैं कि अब सुकून सा है दिल में, किसी की तलब नहीं, जो मिला है वो काफी है, जो नहीं मिला वो भी ठीक है, क्या बात है। अच्छा, गदा हुसैन लिखते हैं कि सिद्रा आज मोहम्मद बख्श खामोश है, पता नहीं क्यों लगता है उसने भी अपनी दुकान की, अच्छा उसकी भी अपनी दुकान की दीवारें बोलना शुरू कर गई है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। अच्छा, वैसे होने को तो कुछ भी हो सकता है। फहीम भाई कहते हैं कि अगर दीवारें बोलती तो सीसीटीवी की जरूरत नहीं होती। ओ या गाइस, इन्हें जी भी रोजी तलत लगी वही। मोहम्मद जमान कहते टॉपिक हमें, मोहम्मद सुमान भाई आपके तो कहने ही क्या भाई, आपका तो जवाब हमेशा वखरा ही होता है। अच्छा, निसाम मोहम्मद भट्टी भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। अली अकबर बिरोही भाई हमारे साथ मौजूद है जी, आप गाना सुनना चाहते हैं, बिल्कुल आपको गाना सुना देंगे। और हिदायतुल्लाह कहते हैं कि सिद्रा केपीके वाला, हो सकता है वैसे। थॉमस हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं मुझे गाना सुना दे ये सॉन्ग दिलजी वदी वही धक धक आ। ओके ओके, यू गाना लायूंगा।

हुसैन मल्हा कहते कि बाजी चलें जी, आपकी ये थोड़ी सी शिकायत है, इसको जरा हम दूर करवा देंगे, ठीक है? बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। और ये मुसद्दिक अली लगारी हमारे साथ है। मुसद्दिक अली लगारी कह रही है, अस्सलाम वालेकुम जी, आप सदरा हो या कोई और हो बताएं, क्योंकि आजकल एआई का दौर चल रहा है। जी जी बिल्कुल, लेकिन मैं सदरा ही हूँ। ये वैसे सही बात है, आगे जाकर आपको हमारे भी डुप्लीकेट्स नजर आएंगे, क्योंकि वो हमारी ही तरह बैठकर आप लोगों के साथ बातें करेंगे। वैसे ये बात तो आजकल हमें देखने को मिल रही है कि अगर आप किसी की भी आवाज दे दें, वॉइस दे दें, तो वो उसके सॉन्ग्स बना देते हैं या वीडियोस बन जाती हैं। तो आगे होने को तो ये चीज बिल्कुल पॉसिबल हो भी सकती है। हमारी जगह पर भी क्या पता एआई बैठा हो और आप लोगों से बातें कर रहा हो। लेकिन ये बात हमेशा याद रखिएगा, इंसान इंसान होता है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक वीडियो जरा वायरल हुई थी, एक किसी मुल्क ने जो है ना वो एआई का रोबोट बना लिया था। वो खातून थी बिल्कुल, मतलब जैसे औरतें होती हैं, उसको बिल्कुल वैसे तैयार किया गया था, उसको टीवी का होस्ट बनाया गया था कि वो अब लोगों के इंटरव्यूज करेंगी। उनका ये मतलब एक्सपीरियंस था कि भाई हम देखेंगे ये वाकई वर्क करता है या नहीं। तो उन्होंने जैसे ही उसको ऑन एयर किया, वो किसी एक बड़ी शख्सियत का इंटरव्यू करने के लिए बैठी रोबोट खातून, तो उसने थोड़ा मतलब बोला, वो इंग्लिश में बोली, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो चाइनीज में स्टार्ट हो गई। तो ये है, अभी उसके ऊपर काम चल रहा है, लेकिन इंसान तो भाई इंसान होता है। अगर मशीनों के ऊपर आप कितना ही डिपेंड करें, लेकिन उसके लिए भी इंसानों की जरूरत पड़ती है। आगे दौर ये बिल्कुल हो सकता है, आपने अच्छे से एआई के ऊपर जो है ना वो अपनी ग्रिप बना लेनी है कि आपको एआई ये स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, वरना तो तमाम की खबर ना तकते अलाय चाचा थी सके थो।

आप क्या कर रहे हैं, आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर रहे हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करने वाले हैं तो जल्दी से सारी ऐसी हैं कि आपकी स्किन के लिए जरूरी है और जब आप देखेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम की तरफ तो आप लोगों को ये चीज भी अंदाजा हो जाएगा कि ये आपके लिए बड़ा सेफ सा प्रोडक्ट है क्योंकि ये मेडिकेटेड फार्मूला है और इसे हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम मर्द हज़रात ख़वातीन ही लगा सकते हैं और अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराइए और खूबसूरत हो जाइए। अरे भाई जिनकी शादियां हो चुकी हैं तो क्या उनको हक नहीं है खूबसूरत रहने का? तव्हां भी बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगायो भले तव्हांजी शादी थी वई हुजे। तव्हां भी सोना थी सघो था ऐं तव्हां हमेशा सोना रही सघो था। और मुसद्दिक अली कहते हैं कि उस्ताद ॿुधायो। अच्छा उस्ताद खां कीअं पुछो सभ खां वधीक निंड किथे ईंदी आहे? शागिर्द चयो स्कूल में। उस्ताद चयो उहो कीअं? शागिर्द चयो छो त घर में अमल चवंदी आहे पढ़ो ऐं स्कूल में उस्ताद चवंदो आहे वेह। अच्छा जोक था। हज़ार भाई हमें सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम। हैदर सोलंकी हमें सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम। जी आप हमें सुन रहे हैं मीरपुर पठोरों से। ओके जी वेलकम हो गया। वैसे ये सिटी का नाम शायद मैं सही रीड नहीं करती हूँ और कहते आवाज तो अच्छा सॉन्ग की आवाज कम आ रही है। किशोर भाई कहते हैं कि अगर दीवारों ॻाल्हाइनि हाँ तो असां दिल में ॻाल्हियूं कयूं हाँ ॿियो इशारनि में। मतलब बोलना ही बंद कर देते। अल्ताफ अली गादी बलूच लिखते हैं कि मुस्कान जी दीवारों को भी दीवारों के भी कान होते हैं क्या? हाँ जी वो तो होते ही लेकिन आप फर्ज कर लीजिए अगर जबान भी आ गई तो फिर कैसा हो जाएगा। चाचा तुम गाने जी फरमाइश किया बिल्कुल हलाए बैठूं था। ओके जी आप पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। दर्दे दिल कहती है कि दुनिया जी ना ही परवाह नजफ अली जो सॉन्ग लगाया जो डेडिकेट तुमको अलीजा और मेरी तरफ से। ओके जी डन हो गया और आप पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। यहाँ पर टाइम हुआ है जरा हम न्यूज में की जानब जाते हैं उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले हैं तो वापसी आप लोगों के पास ही आएंगे। हाँ जी काले विनासी तां की छड़े इतने बैठा हो जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर तव्हां परचेस करण वञो था त भले उहा वञो परचेस करण ऐं वठी अचो। असां बि तेसि ताईं मोटी अचूं था बिल्कुल ओहीअ वञी ओहीअ मोटूं था। सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट। लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
4: Brought to you by
5: Super White Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
6: सुहेल आफरीदी समेत पीटीआई जा अठ अॻवान हिफ़ाज़ती तहवील में आहिनि। केपीके पुलिस मूजिब सुहेल आफरीदी, केपीके असेंबली जो स्पीकर सलीम सवाती, जुनेद अकबर ऐं ॿिया पुलिस जी हिफ़ाज़ती तहवील में आहिनि। पुलिस अलर्ट आहे, कंहिंखे बि कानून हथ में खणण न ॾींदी।
7: पाकिस्तान जो अफ़ग़ानिस्तान खां दहशतगर्दनि जे सहूलतकारी ख़तम करण जो मुतालबो इस्लामाबाद में तकरीब खे ख़िताब कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो आहे त पाकिस्तान जो अफ़ग़ानिस्तान खां रुगो हिकु ई मुतालबो आहे त दहशतगर्दी जी सरपरस्ती ऐं मदद बंदि करे पाकिस्तान ख़िलाफ़ पंहिंजी सरज़मीन जो इस्तेमाल रोके। ख़िते में अमन लाइ पाकिस्तान जे कोशिशुनि खे रद्द नथो करे सघिजे।

0: में सरहद पार थींदड़ हमरा बर्दाश्त नथा करे सर्जन अफगानिस्तान पाकिस्तान सां कयल वायदा पाड़े
1: सऊदी अरब के शाह खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक हमलो पाकिस्तानी शहरी शहीद 11 जणा जख्मी हुसी मलेशिया के हमलन सबब शाह खालिद ए शाह फहद एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल थी वही सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी हमले में पाकिस्तानी शहरी के शहीद थियण की तस्दीक कर छी गुजरियल ढीह शाह खालिद एयरपोर्ट से हमले में अमेरिका सऊदी अरब बंग्लादेश उर्दन मिस्र ए फलस्तीन जा 12 शहरी मारजी वया हुआ ए 309 जख्मी थे हुआ
0: आबना अरम्स ते अमरीका ईरान बरकरार कतरी सालसी बग भराई कराए न सगी आबना अरम्स में तेल बरदार बेड़न ते हमला जारी अमरीका जे तेरान नाकाबंदी वधिक के जवाब नाकाफी देण करार ॾेई छॾियो ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जे सरबराह मोहसिन रज़ाई चयो आहे त केपीए अमरीका सतन शर्तन उल कयो आहे त वॉशिंगटन जो मजमूई जवाब तोरण लाइ नाकाफ़ी आहे
1: केपीके में सिक्योरिटी फोर्सिस जो खारजी दहशतगर्द खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं बनून में फोर्सिस जो ऑपरेशन एक खारजी दहशतगर्द मारजी वो सिक्योरिटी जरिए मौजूद बनून में गुजी इतलात है दहशतगर्द खिलाफ कार्रवाई कई वही दहशतगर्द की चुरपुर से भी नजर आ
0: सिंध हुकूमत एहतजाज जो हक खसे छो है वह सिंध रैली का अग कलम 174 लागू कयो वयो सखर में डिस्ट्रिक्ट बार के खिताब कंदे एसयूपी सदर सैयद जैन शाह मकानी इदारन जरिए सूबाई हुकूमत के गैरफाल करण की कोशिश कई पई वे मुल्क में सियासी गैर यकीनी वाली सूरत हाल है कंखे भी खबर ना तो सुबाने सूबा ठाया वया तो एनएफसी में 1991 वारो पानी और अठा पान मुरादो खत्म थी वो
1: रियालोह के कच्चे में माओ ए धी कतल फैज मोहम्मद बुडू थाने की हद गोट बुढ़ा नारे जो में हथियारबंदन सनम जाल इतबार नारे जो ए संदस धी सलमा के कतल कयो पुलिस जो चवण है मकतूला सनम नारे जो थे संदस मुड़स इतबार के कतल जो इल्जाम हो वाकई 3 साल का गुम हुयू गुजरियल रात भाव वट आयु त खेन कतल कयो वयो
0: दोदापुर जो मोहम्मदपुर वारे इलाके में जखराणी बिरादरी के बिंदुरन में पुराने हलंदड़ तकरार त हथियारबंदन फायरिंग कर एक जन के कतल कर छो गोठ गुलाम हुसैन जखराणी भरसा हथियारबंदन हमलो करे नौजवान शमीर जखराणी के कतल करे छो वाके बाद धुरन में शिकतान तेज थी वही
1: स्कूलन में टोकन हड़ताल बाद रैलियू कढ़ियूं वयूं सर्विस स्ट्रक्चर मुकररी ए रेगुलर करे वारन मसलन जे हल समेत बायोमेट्रिक ए बदलन जा इख्तियार जिले सतह ते देण जो मुतालबो
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान
4: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है सुनते रहो GAFM 91.6
5: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है हाँ तो और क्या सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम अब स्किन की केयर करें कल बारात पे भी जाना है तुम स्ट्रॉबेरी वाली वो भी सुपर वाइट की ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है तुम कौन सी यूज करती हो
6: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है
7: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम
6: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन
7: अच्छा वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
8: सुपर वाइट
9: खुशखबरी हाँ अवा के परेशान थियण की का भी जरूरत न आ जेकरे तवहां कें भी बीमारी में मुब्तला आयो या बीमारी पुरानी थी वही आहे तो उन बीमारी जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान होम्योपैथिक कंसल्टेंट

0: and family physician, senior lecturer, Nawab Shah Homeopathic Medical College and Hospital, Nawab Shah. मरीजन जो चेकअप ऐं इलाज होम्योपैथिक तरीके सां कंदा आहिनि अल्हम्दुलिल्लाह केतिरा ई मरीज सेहतयाब थी चुका आहिनि अवां बि हिकु दफ़ो आज़माए ॾिसो चेकअप फीस सिर्फ़ 300 रुपया क्लिनिक में मेडिकल स्टोर जी सहूलियत पिण मौजूदु आहे क्लिनिक जो टाइम ऐं ॾींहुं हर छंछर खां खमीस ताईं सुबुह जो 10 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं जुमो मोकल आहे एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक बदीन स्टॉप रोड पुरानी सब्जी मंडी एमसीबी बैंक जे साम्हूं नया पुल हैदराबाद वधीक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770
1: हक सच जो आवाज़ गीत संगीत जो आवाज़ जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़ ॿुधंदा रहो

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: अवेलेबल कराना बाकी रहता है क्योंकि हाँ ये बात है, थोड़ा सा फेस वॉश को ना अवेलेबल कराने में थोड़ा सा डिले करा दिया गया था। तो अगर आप भी अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो लाजमी से नंबर्स के ऊपर रब्ता कीजिएगा। और ये जो डी स्किन का फेस वॉश है ना, ये बड़ा कमाल का प्रोडक्ट है। और डी स्किन का फेस वॉश जिसके अंदर हाइलोरोनिक एसिड सीरम एड किया गया है, और ये जो हाइलोरोनिक एसिड सीरम होता है ना, ये बड़ा कमाल का सीरम होता है जो कि आपकी स्किन के अंदर तक जाता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, और आपकी स्किन को हमेशा क्लीन भी रखता है। तो डीपली क्लीनिंग अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन की होनी चाहिए तो आप डी स्किन फेस वॉश का यूज कर सकते हैं। ये मर्द हजरात भी लगा सकते हैं, खवातीन भी लगा सकती हैं, बच्चों के लिए भी है, एजड लोगों के लिए भी है, और टीनेजर्स के लिए भी, सबके लिए है जनाब डी स्किन का फेस वॉश। तो लगाइए और अपनी स्किन को जरा अच्छा सा फील कराइए, क्योंकि जब हम अपनी स्किन को अच्छे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करवाते हैं ना तो हमारी स्किन भी खुश हो जाती है। तो अपनी स्किन को खुश रखिए और डी स्किन फेस वॉश के साथ डी स्किन क्रीम का भी यूज कीजिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी आप सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही फार्मूला है जनाब जो कि आप ट्राई करके अपनी खूबसूरती में इजाफा ला सकते हैं और हमेशा के लिए एक सेफ प्रोडक्ट का इंतखाब कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी ब्यूटी केयर रूटीन को जो है ना नॉर्मल और आसान बनाना चाहते हैं तो ये दोनों प्रोडक्ट आपके ब्यूटी केयर रूटीन में लाजमी शामिल होने चाहिए। इसी के साथ साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स के अंदर अवेलेबल कराना चाहते हैं, किसी सिटी किसी गांव से आपका ताल्लुक है, आके हाँ डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश नहीं मिल रहा, तो झट से डायल कीजिए 0332738 4309। बड़ी 3383 84 309। आई बी ओ नंबर आहे 0312502590 7। बड़ी 312 50 5970। ये बई नंबर आइन जेके तव्हां डायल करे पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुजे या वरी डी स्किन जो फेस वॉश हुजे, ये तव्हां अवेलेबल कराए सघो था। अवेलेबल कराइण जे लाइ बि ॾिसो तव्हांजे लाइ कहिड़ी आसानी रखी वई आहे। तव्हांखे बाबा कंहिं बि तरह सां का बि प्रॉब्लम न ईंदी। ऐं जॾहिं तव्हां डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कंदा त तव्हांखे ख़बर पवंदी वाकई तव्हांजे लाइ केॾा ज़बरदस्ती क्वालिटी जा प्रोडक्ट आहिनि जेके वाकई तव्हांजे लाइ तयार कया विया आहिनि तव्हांजी स्किन जो ख़्याल रखण जे लाइ। छो त ॾिठो वञे त हर कोई डिज़र्व करे थो बाबा उन्हनि वटि सुठो प्रोडक्ट हुजे। ऐं क्वालिटी वारियूं चीज़ूं त तव्हां वटि मतिलब थोरियूं कमी हूंदियूं आहिनि। असां माण्हुनि खे जेको आहे न सिर्फ़ हिकिड़ो ब्यूटी प्रोडक्ट नथा मतिलब उन्हनि खे ॾिसूं, बल्कि तव्हांखे हिकिड़ो क्वालिटी वारो प्रोडक्ट जे बारे ॿुधायूं था। अगरि तव्हां बि कोई क्वालिटी वारो प्रोडक्ट लॻाइण चाहियो था त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे हिकु दफ़ा लाज़मी ट्राए करे ॾिसजो। ट्राए करे ॾिसी वेंदी त तव्हां लाइ सघो था। उन खां अलावा तव्हां असांजी पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कंदा हलो था, तव्हांजा फीडबैक्स आहिनि जेके असांखे मिलंदा वञनि था, ऐं बिल्कुलु तव्हांजा फीडबैक्स शामिली प्रोग्राम रखिया वेंदा। अच्छा पैनल ते अचूं था त पैनल ते खोड़ सारा मैसेजिस माण्हुनि जा जमा थी विया आहिनि, त पैनल वारा मैसेजिस बि पढ़ंदा हलंदासीं। और मोरो से हमें मंठार अली ने ज्वाइन किया है, कहते डेडिकेट अली गोहर गडाई सॉन्ग महबूब अली मीरजट। मां कोशिश कयां थी भा तव्हांजी पसंद जो गानो हलाए वठंदासीं। मीरपुर खास हमारे साथ मौजूद है अब्दुल्ला महर, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम प्यारी भाई। और आप और आपकी पूरी फैमिली डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं और आपको बड़े कमाल के रिजल्ट भी मिलते जा रहे हैं, बढ़िया हो गया ये तो। अच्छा सुल्तानपुर खां अब्दुल गनी जूनी जो हमारे साथ कहते हैं सलाम सदरा मुस्कान साहिबा, शो लाजवाब है जवाब, फिर तो घर में रोजाना झगड़ा होगा, खाना पीना बंद हो जाएगा। अरे भाई क्या बात है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। गोठ मोहम्मद तैयब थेबू खां अभी बोला थेबू है आरजे सिदरा मुस्कान शो तवान जो वेरी वेरी नाइस आए, सलाम तवाके। वालेकुम अस्सलाम तवाके। अच्छा ये हमारे साथ मौजूद है दिल रुबा बेरिया रोड से, कहती है अस्सलाम वालेकुम मेरी क्यूट सिस सिदरा जान, कैसी हैं आप, शो आपका नाइस है, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपकी आवाज अंदाज बहुत अच्छे है, मैं आपको बड़े शौक से दिल लगाकर सुनती हूँ 8-9 साल से, जब तक दिल करता है आपकी आवाज को। अच्छा और आपकी आवाज सुनती हूँ तो सुकून मिलता है दिल को, आपको सुन के एक सुनती हूँ ना एक भी शो मिस नहीं करती हूँ, मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखेगा, नसीब अच्छी करेगा और बदनजर से बचाएगा आपको, आप मुझे याद करती हो बहुत खुशी होती है ऐसे याद करना मुझे, एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी ली है अबू लेकर आया है, मैंने अपनी सिस को भाभी को सारी कजन्स को बोला है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम ले लो आप सब, लव यू सिस सिदरा जान। क्या बात है दिलरुबा, आपकी मोहब्बतें देकर इसमें मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ. इतना प्यार करने वाले लोग भी मौजूद है. अरे भाई अल्लाह से ताकि खुश रखे मुझे सोनी दिल रुबा. आई तवां जो मोहब्बत हुआ बाबा ये ला करी मोहब्बत हमेशा कायम रहे. आई तवां के दिल से चौथा भली करी आया. आई तवां डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करी दिसो. आई तवां के बुधा जो तो तवां के रिजल्ट्स के मिला लियो हालवा ता आबिद भाई ता उठी आया ना डिस्काउंट्स में दे या फिर चूनो लगाए. वैसे आबिद भाई बड़े अच्छे हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं. तो आबिद भाई के हाथ से आप जितने भी बेरिया रोड वाले लोग हमें सुन रहे हैं वो आबिद भाई की शॉप से जाकर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कर सकते हैं. साथ में आपको फेस वॉश भी मिल जाएगा वहां से. तो अगर आपको फेस वॉश के बारे में ये चीज है कि भाई हम कहां से मिलेगा अब कहां से जाकर परचेज करें हम तो आप आबिद भाई के शो पर चले जाइए वहां से आपको फेस वॉश भी मिल जाएगा. उनके यहाँ फेस वॉश भी अवेलेबल है. तो दिलरुबा फेस वॉश भी परचेज कीजिएगा. ठीक है जाना. ओके जी मोरो से मंथार अली दोबारा से आपने वही वाला मैसेज शेयर कर दिया है. आपको वेलकम कहते हैं. जवेरिया हमारा शो सुन रही है. वालेकुम अस्सलाम जवेरिया. जवेरिया हमें लाड़काना से सुनती है. प्यारी जवेरिया को वेलकम एंड खुशामदीद कहते हैं. आप ही डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रही हैं ये तो अच्छा हो गया. मकसूद मलहा हमें सुन रहे हैं मेहरापुर से कहते हैं आदाब आदाब डी स्किन ब्यूटी शो में मुझे मास्टर मंजूर का गाना सुनाना हाजिर साईं. बिना कहीं गाने की फरमाइश मतलब थोड़ा कम ही माण्हू कंदा आहिनि. गाने जी फरमाइश घटि कंदा कयो बाबा. ये हमारे साथ कहते सदरा जी आदाब. दीवारें बोलती तो शायद तन्हाइयों का अजाब कुछ कम हो जाता. मोहम्मद शरीफ कुंभ खां असो प्रोग्राम बुधन पाया. यह गाल तवा वैसे सफा सही कही. जेके मानू तन्हा हुंदा है उन्हनजो पर यो मसलो जेको आ हल थी वने. हां तो उन्हन जिलाए दीवारों गाला ना तो उन्हन जिलाए एंटरटेनमेंट जो जरियो जना. ओगरी सो प्यारा भाई तुम मोहब्बतू आए एंजॉय कर असो प्रोग्राम. आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल भी कंदा रहो.

सारो गानो बुधरायो शादी वेचारे जे थे कोन पई अगर शादी करण चाहिंदा आइन त कोई न कोई मसलो थिना न शादी जका न रुकी जी वेंदी आहे सो अल्लाह कंदो ता जी शादी थी वेंदी पर उन खा पेरी ता डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करण शुरू कयो अही गानो तमा के डेडिकेट आहे।

सभ का पहले खर्च जो करो हो डी स्किन ब्यूटी क्रीम वी बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम तक मुनासिब पैसों में मिली रही है ये करीबी जनरल स्टोर से हलिया वो उनके चो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम दे क्रीम दे जिनके मथा डॉक्टर माई जो फोटो है यह निशानी अस उन मानी वेचारा पढ़ल ना अनपढ़ भा असा बुधन पाया भेनर असा बुधन पे तेजे लाइ इ निशानी याद रखो तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के डब्बी के मथा डॉक्टर माई जो फोटो है समझो था यह निशानी है तवाज लाइ कोई दुकानदार जो है बेवकूफ न बनाए सके बस वनो सही प्रोडक्ट परचेज करी अचो। अच्छा चाचा कहते हैं सदरा बेटा इंसान भी अजीब है कभी बहुत सी बातें करने को दिल करता है और कभी मुंह ही नहीं आज मेरा रहा कुछ कहूँ वैसे आपको कितने मैसेजेस करता हूँ तंग करता हूँ बट आज अजीब कैफियत है होता है ऐसा कभी कभी होता है और ये वैसे आप कोशिश करें वो तमाम चीजें जो है ना अपने अंदर दिल में मत दबा के रखें जो चीजें आपको तकलीफ देती हैं जो आपकी तकलीफ का बायस बने लोग हों या चीजें हों या बातें हों उनको अपनी जिंदगी से थोड़ा सा स्पेस में रखा करें आप सुकून में रहा करें क्योंकि आपका मेंटल रिस्पॉन्स जो होता है ना मेंटल हेल्थ जो होती है ना वो ठीक होनी चाहिए बेहतर होनी चाहिए सारी चीजों से ये चीज मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट होती है। आबिद ब्रोही हमें सुन रहे हैं हाय जी गुड शो आपका बहुत शुक्रिया और उनके अलावा फहीम भाई कहते हैं कि ज्यादा कमेंट्स करने का अरे भाई ज्यादा कमेंट्स ऐसा है कि फिर दो तीन कमेंट्स कर दिया करें। रमेश ठाकुर हमें सुन रहे हैं सुल्तान आबाद से ओके जी आपको भी वेलकम हो गया। अबू हनीफ आपने गाने की फरमाइश कर दी है और मुझे लगता है ये वाला आपका गाना होगा ओके जी बिल्कुल सुनेंगे। और जफर भाई हमें सुन रहे हैं कहते हाय जफर खत्ती बाजी फर्स्ट मैसेज है मेरा जफर भाई आपको दिल से वेलकम कहते हैं आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं और आपको भी मशवरा देंगे कि आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम ट्राई करके देखिएगा और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके लिए हमने हर जगह अवेलेबल करा दी है अगर नहीं भी मिल रही है तो नंबर्स बता रही हूँ प्रोग्राम के अंदर उनके ऊपर राबता कीजिएगा ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स के ऊपर भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल करा दिया जाए।

जी क्या बात है। मोहम्मद निरंजक रानी भाई जेकब आबाज से सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। अर्ज मोहम्मद गोला भाई हमें सुन रहे हैं जेकब आबाज से, देते लाजवाब कंपेयरिंग लाजवाब प्रोग्राम, थैंक यू प्यारा भाई। जेकब आबाद में मिले थे डी स्किन ब्यूटी क्रीम हाला वाल तो अच्छा समाटू गोपांग कहते हाय अस्सलाम वालेकुम, अभी लाड़काना यूनिवर्सिटी में पेपर करके आया हूँ। आई एम लिसनिंग योर प्रोग्राम इन कंबर सिटी, वेरी नाइस वॉइस डियर, थैंक यू वेरी मच। आपने गाना भी लिख दिया है, गाना भी लगा देंगे और इनका अलावा ओके गदा भाई बढ़िया हो गया भाई, आप खुश रहा करें ठीक है। और अलीगुल हमें सुन रहे हैं गोठ सोनवा खां, अलीगुल चांदियो, आकिब गुल चांदियो, गुलाम फरीद चांदियो, साईं तवा के बुधी रहा आयूं, थैंक यू वेरी मच भा तांजो मोहब्बतू आहिनि, तवा के चौंदा भली करे आया चाचा फेसबुक।

जी अंदर हाइलोरोनिक एसिड सीरम आए ये जेको सीरम हुंदो आ ने डाडो तवां जी स्किन लाइ फायदेमंद आए ट्राई करे दिस जो अली दिना कश्मीर से मैं सुन रहे हैं भाई को वेलकम हो गया तारिक भाई कहते हैं कि हमादुल्ला बिरोही आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं हैदराबाद से ओके जी हमादुल्ला बिरोही भाई को भी वेलकम कह देते हैं किशोर भाई लिखते हैं कि सोच रहा हूं उसे तोहफे में पायल दूं जब वो चलेगी तो मेरा इश्क हां जी मेरा इश्क गूंजे।

0: प्यारो गानो एंजॉय कयो. गाने खां फौरन बाद ही शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक आहे. वापसी जल्दी मोटी तव्हां ॾींदासीं. तव्हां करे इनमें जो इते वेठा हुजो. ओ हीअं वञी हीअं वठूं था. सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी क्रीम. लगाइए और खूबसूरत हो जाइए.
1: FM 88 Network, Sindh ki Awaaz.
2: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by. It's 2:30 PM. This time check is brought to you by.
3: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aise diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
4: अरे न खुश्क ऐं बीरोनो की स्किन हाणे इन जे लाइ छा डैमेज ऐं डल स्किन खे कयो आउट. पर इहो कीअं तोखे खपे? सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, जंहिं में आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन, जो जिल्द खे रिस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ 3 ॾींहनि में. जिल्द खे बणाए नरम, मुलायम ऐं ब्राइट. उन सां गॾोगॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम, जंहिं जी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती. हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल. सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स.
5: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ़ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. हिन में मौजूद वाइटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ़ 2 ॾींहनि में. डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
6: अभी ॿुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज.
7: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसई नूर मुझो तो
6: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो.
8: 0742 9031081661.
9: यार मछा क्या किथे वन

0: अभि बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: सही लिखते हैं कि दिल जी वधी वही धके धके आ छो जो मून डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई यार। ये आपने बहुत अच्छा किया।

नॉट बैड, गाना बहुत अच्छा है. और इसी के साथ साथ यहाँ पर भूरल शर हमें सुन रहे हैं, कहते अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम, आपको कहते हैं खुश आमदीद. हिदायतुल्लाह कहते हैं कि वैसे शुक्र है तुम आरजे हो, वरना ऐसे सॉन्ग दूसरे. हाँ ये बात है, बस सभी जो ख्याल करना पड़ा है. किशोर भाई कहते हैं कि भूखे मर जाएंगे मेरी कब्र के कीड़े भी, कुछ इस तरह सिखाया है तेरी मोहब्बत ने मुझे. आई लीड़े ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, आप ऐसा कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए, उससे ये होगा कि आप खूबसूरत हो जाएंगे, फिर आप खुश भी हो जाएंगे, फिर आप खुश होंगे तो समझ लीजिए सब सेट है. और खूबसूरती को अगर आप मजीद निखारना चाहते हैं, खूबसूरती के मामले में थोड़ा सा खूबसूरती ऐसा होता है ना कि खूबसूरती हर किसी को चाहिए होती है. मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई, अगर जितने भी लोग आप हमें सुन रहे हैं, आप सारे लोगों के लिए ये वाला सीन है कि भाई आप सब लोगों को खूबसूरती चाहिए होती है. लेकिन खूबसूरती के मामले में अगर आपको सही प्रोडक्ट नहीं बताए जाते, तो सही वाला प्रोडक्ट अगर आपको नहीं मिलता, तो फिर आप ये सोचते हैं कि भाई सही वाले प्रोडक्ट तो होते ही नहीं है मार्केट में. ऐसा कोई सीन नहीं है, सही वाला प्रोडक्ट अगर आपको बता दिया जाए और सही वाले रिजल्ट अगर आपको मिलते रहे, तो फिर आपको पता चलेगा कि वाकई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना कमाल का प्रोडक्ट है. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम इतने अच्छे से आके चेहरे पर

करती है कि जब आप डीस्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते हैं तो आप लोगों को खुद ही एहसास होता है कि आप कितना कमाल का जो है ना प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। और डीस्किन ब्यूटी क्रीम आप सब लोगों के लिए, मर्द हजरात खवातीन सभी लगा सकते हैं। और डीस्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला भी है, तो ये भी चीज जरा जहन से हटा लीजिए कि भाई हमारे चेहरे पर सूट नहीं करेगी, क्योंकि आप लगाइए तो सही डीस्किन ब्यूटी क्रीम, आप सब लोगों के चेहरे पर सूट करने वाला प्रोडक्ट है। और ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, और साथ साथ ये 2-in-1 फार्मूला है, यानी कि जब आप डीस्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करेंगे तो आपको जो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं ना, वो ऐसे मिलेंगे जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो। क्या समझे फिर? अगर आप भी डीस्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करने वाली समातें बनना चाहते हैं तो डीस्किन ब्यूटी क्रीम अपने करीबी जनरल स्टोर से जाइए और नाम लेकर तलब कीजिए। नंबर बाकी आपको बताते रहेंगे पूरे प्रोग्राम के अंदर, जिनके ऊपर आपने रब्ता करना होता है। कॉल करके बस उन्हें ये कहना होता है कि भाई साहब फलां जगह पर डीस्किन ब्यूटी क्रीम नहीं मिल रही है। अगर आप थोड़ा सा शाय हैं या फिर आपको ये लगता है, अच्छा हाँ लड़कियां खासतौर पर ऐसा होता ना, कहती हैं भाई हम लड़कियां हैं, हम नंबर के ऊपर रब्ता नहीं कर सकते, तो आप अपने घर पे आपके भाई हैं, आपकी अब्बा जान हैं, तो उनके नंबर्स के ऊपर से रब्ता कीजिए। उनको ही बोलिए कि भाई साहब या अब्बा जी आप इन नंबर्स के ऊपर रब्ता कीजिए, उनको बोलिए कि फला फला जगह पर जो है ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं मिल रही है, तो वो अवेलेबल करा देंगे। आप कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं, उनको बताइए कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की कहाँ कहाँ पर जरूरत है। और उनके अलावा असाई टीम माशाल्लाह इलाही एक्टिव लगी पई है, तव्हां जे कॉलिंग जी इंतजार में आहे। जॾहिं तव्हां कॉल कंदा त तव्हां जे करीबी जनरल स्टोर ते जल्दी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराए छॾींदासीं। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे अंदर वाइटमिन ई बीट्स आहिनि, माइक्रो बीट्स आहिनि, इहे तव्हांजे चेहरे ते जेको आहे फेशियल वारो निखार आणे छॾींदा। छो त वाइटमिन ई बीट्स ऐं माइक्रो बीट्स आहिनि, इहे जॾहिं जंहिं बि प्रोडक्ट जे अंदर एड कया वेंदा आहिनि त उन प्रोडक्ट जी जेका रिज़ल्ट आहे न उहा 10 गुना वधी वेंदी आहे। जेके महांगा महांगा तव्हां फेशियल्स कराईंदा आहिनि उन्हनि जे अंदर बि बिल्कुल वाइटमिन ई बीट्स ऐं माइक्रो बीट्स एड कया वेंदा आहिनि, तॾहिं तव्हांखे ॾाढा सुठा रिज़ल्ट मिलंदा। पर हाणे हिननि सीज़न खे थोरो साइड ते रखो ऐं तव्हां घर वेठे मुनासिब पैसनि में डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगायो ऐं सफ़ा वीआईपी थी वञो। अहिड़ा ॼण तव्हांखे महांगो फेशियल करायो आहे, पर तव्हां इहो सिर्फ़ पाण करे सघो था, छो त तव्हां पाण डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज़ कंदा। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करण जे तरीक़ेकार बि बहुत ज़्यादा आसान है। आपने ऐसा करना है, सबसे पहले डी स्किन फेस वॉश जो है न उसे अपना फेस वॉश कर लेना है, रात के टाइम आपने इस्तेमाल करनी है। और अपना फेस वॉश करने के बाद अच्छे से चेहरे को सुखा लीजिए, ये क्लीन करने के बाद फिर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना अपने चेहरे पर उंगलियों की मदद से लगाइए, ठीक है। और मसाज नहीं करना, बस प्यार से लगाइए, सुकून से लगाइए और इस तरह लगाइए कि क्रीम आपके चेहरे पर थोड़ी सी नजर आनी चाहिए। फिर आप पूरी रात सो जाइए, सुकून की नींद कीजिए, सुबह उठकर दोबारा से फेस वॉश कीजिए। जब आप 2 रातें मुकम्मल ये प्रोसेस करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि वाकई आप कितना अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 2 रातें लगाइए, 2 रातों में आपको अच्छे वाले रिजल्ट मिल रहे हैं, और ऐसे रिजल्ट जो कि भाई बिल्कुल सेफ है आप सब लोगों के लिए, आपके लिए कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है इस प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है। तो लगाते रहिए और खूबसूरत होते रहिए।

0: ये बात है, वैसे नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हो चुका है, नेटवर्क की वजह से जो है ना लोगों के शायद हमारी पोस्ट भी नहीं पहुंच पा रही है, तो आप हमारी पोस्ट को शेयर मार दिया करें, ठीक है, और शेयर कर दिया करें, ऐसा ना हो कि आप कमेंट में शेयर का स्टिकर ही भेज दें। वैसे ये पोस्ट पर मेरे ये अच्छा होता है कि आप स्टिकर्स नहीं सेंड करते, क्योंकि जब स्टिकर्स वाला मसला हो जाता है ना, फिर आप लोगों के कॉमेंट्स ऊपर चले जाते। मेरी माशाल्लाह जो लिसनिंग है ना, बड़ी इंटेलिजेंट लोग है, तो आप अच्छा सा एक प्यारा सा कॉमेंट कर देते। बाकी तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का भी यूज कर रहे हैं। इसार अली शेख कहती है, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर सिद्रा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ स्टार, आप बताएं कैसे हैं? ठीक ठाक है, मजे में हैं। नजर मोहम्मद भट्टी भाई, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है कि आप बात है? चाचा कहते हैं सैडी लास्ट लिंक, ओके चाचा। और अदो कहते हैं कि एआई म्यूजिक एड़ो ठाईंदो आ, सफा मस्त, सफा आखिरी, सही था चो, सही था चो। कहते हैं कि अदा अज नेट सही नथो हले, इन करे उपता सुपता कॉमेंट कया वे। खेरा खेरा का गाल को ने का। और जी
1: मिया जी ना है परवा,
0: सोना तो खैर मुझे,
1: दुनिया जी ना है परवा, सोना तो जो खैर मुझे।
0: हाँ जी, दुनिया की परवाह करण भी न घुर्जे, दुनिया से जड़ी तुम परवाह करना ना, पानी जिंदगी जीण ही छड़े दींदा, दुनिया की परवाह न करो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करा रहो। फहाद अली लाशारी बलोच हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। जी जी, आपको भी वेलकम कहते हैं प्यारे भाई, खुश आमदीद। और मटियारी से खुदा बख्श खास के लिए भी हमारा शो सुन रहे हैं भाई साहब, आपको भी वेलकम कहते हैं। गदा कहते हैं कि तू जो खेर नाए शो जो तू डी स्किन ब्यूटी क्रीम नथो लगाई, हाँ उन्हें जो खेर नाए जगह डी स्किन ब्यूटी क्रीम नथा लगाएं, बाकी उन्हें जो खेर जगह डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएं। सो बाबा तां सब डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करो। फहद भाई कहते हैं कि मैं भी आ गया हूँ आपके शो में, बहुत शुक्रिया भाई, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, लास्ट में ओएसटी आप सुनना चाहते हैं, मैं कोशिश करती हूँ आपका ओएसटी लगा देंगे। चाचा कहते हैं आरजे इतनी इंटेलिजेंट है जी, बिल्कुल सोबत का असर तो होगा ही आप लोगों के ऊपर। वैसे आप अपने कमेंट्स क्यों डिलीट कर रहे हैं?

हाँ जी ईएम बिकू भला दींदो अच्छा ता ही रो बुधाया ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में ता वठो कोन था ईएम बिकू दींदो अच्छा अरे बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जका ने तमा सबनी मानन च लाया है दाडी सेफ प्रोडक्ट आ है मेडिकेटेड फार्मूलो आ है तमा दिल खोले लगाए सको था अखियों बूटे लगाए सको था आई वणो हाणे पाने करीबी जनरल स्टोर ता वठी चो डी स्किन ब्यूटी क्रीम मकसद मला केती फरमाइश बंद हां जी मां कोशिश कनम त फरमाइशन वारा गाना थोड़ा घट हलायो आई उन खा अलावा फहद भाई कहते हैं कि जिंदगी में बार-बार सहारा नहीं मिलता बार-बार कोई प्यार से प्यारा नहीं मिलता जो पास हो उसे संभाल के रखना क्योंकि खोकर वो फिर कभी दोबारा नहीं मिलता ये आपने बिल्कुल सही बात बोल दी।

वाह साईं वाह वाह जो भलो गानो बुधो सी एकड़ो लास्ट में ट्रैक आए वो भी बुधी वठना सी मंजूर सखिराणी जी आवाज में आए बिल्कुल जी बिल्कुल और फहद भाई ता सबनी बुधदड़न के सलाम देई छड्या है ने सो वालेकुम अस्सलाम गदा के दे लास्ट में थकल गाना छो लगाईंदी आही ये मानन जो फरमाइश होंदी आन भला था न आज त लास्ट में सठा गाना हलाया है और मुसद्दिक कहते हैं सिस्टर वडी मेहरबानी बुधू पया आई चौथा अदी अवां मान डनो लख थोरा तो सिगरेट अरे भाता जो मोहब्बत वन ता प्रोग्राम में शामिल थे मोके लाइक सुठो लगना जदे ता प्यारा प्यारा मानु सने प्रोग्राम में मौजूद हुंदा है आई वरी ता असा के दसिंदा तो बाजे सता जो प्रोग्राम बुधू पया ता जी वजह से सने प्रोग्राम में रौनक हुंदी है किशोर भाई कहते हैं कि अदा तू शक्ल जो अलाई केड़ो आही पर दिल जो बादशाह आही मोके फखर इन गाल जो आहे ता आ हन बादशाह जे दिल में जगह उठाई है इन गाल में कोई शक कोने को तो मुझो प्यारो भा जो वो भलो मनु आए पान भी जेको पान भलो हों सभी के भलो समझ जी मुख्य वरी सब भला लगना है पर जड़ी असलियत दिखारी खबर पड़ी अरे बाप रे हम तो गलत थे चलो सुठो आयो भी वक्त ते हर कें इसलिए तो वरी खबर भी पेजी वेंदी आहे और ता सब जेको आ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हणो था कोने मुखे लाजमी बुधाना का अच्छा कमेंट में ना ता डी स्किन ब्यूटी क्रीम लिखो एको एको मानो सही आ हनीफ ता जो मोहब्बत वन ता प्रोग्राम बुधो पया

जी जी बिल्कुल सही समझे, चाइना वाली कॉपी। और आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया। और साथ साथ अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस वजह से परचेज नहीं कर पा रहे हैं कि आपके एरिया में नहीं मिल रही है, अना तीन अवेलेबल कोन है, जल्दी साझे के नंबर तक बुधाई प्रोग्राम के अंदर उन्होंने राबो करी वठना कहो राबो करण की इत मतलब सुठी गाल लगनी तो राबो करण गो अगर तवे एरिया में अवेलेबल कराया वा ही प्रोडक्ट, चाहे वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या डी स्किन फेस वॉश हो, सो अवेलेबल करायो पान के जनाब थोड़ो स्पेशल फील कर डी स्किन ब्यूटी क्रीम से तमाम भी सोना थी वनो। अच्छा बाकी यो बात गदा यूट्यूब छड़े दिनो आ बाबा मजो न होयो अलाइज अच्छा मुसद कहते हैं कुछ अड़ा मानो हुंदा है ना जेके दिलन में घर करे वेंदा है ना, वे बेहतरीन शख्सियत जा मालिक हुंदा है ना। बिल्कुल भाई हां सही था चो, इंसान पांजी इज्जत जेको ना वो पान ठाइंदो है अगले

इंसान जी नजर में बाकी तो तरबियत से भी डिपेंड करे तो के इंसान की कड़ी तरबियत थियल है वो अचे बाहर मानन के वो दिखारी है तो बाबा ऐसो मुझी तरबियत केड़ी भली थी सो कोशिश करना कर तो पंजी तरबियत जका है ना उहा सुठी रखो चाहे तुम वालदेन आयो या चाहे तुम पंजी तरबियत हली रही है तो तुम पंजी थोड़ो इन चीज दे भी ख्याल करना कि कुछ चीजों अड़ी होंदू आ जेके इंसान के पान के अंदर जो ना वे सही रखन घुर्जन तुठो सलूक ना कर उम्मीद रखना कर कें तवी वजह से दिल आजारी न थिए बाकी तो यो आए तो इंसान कदें भी कंखे राजी न थो करे सके यानी तवा कें कुछ भी करे वठंदा पर तवा कंखे राजी न करे सकंदा सो हल्की फुल्की कोशिश करे छींदा कर बाकी यो आ मानू के अगले इंसान के राजी करने लाए पांजे जी जान न लगाए छींदा कर बाकी वो इंसान तासा खुश थे तो राजी थे तो अगले इंसान जो जर्फ है बाकी अगर नो राजी थे तो बाबा हाँ असा कर सकूं खुश हो तुम पानी खर्चे थे पानी खर्चे थे तो पानी डे स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइंदा असा पानी डे स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइंदे ईअं न सो इत ही हाँ तुम था इजाजत वरी मुलाकात मुझी थे पी 5 बजे वाले प्रोग्राम में सो ज्वाइन कह कि गलती थी तो माजरत करी वूं था मोकलानी ना ही बाबू सिंह सलामत सलामत अल्लाह हाफिज़ बाय लव यू ऑल टेक केयर अल्लाह हाफिज़।

0: केपीएमए सिक्योरिटी फोर्सेज जो खारजी दहशतगर्दन खिलाफ कार्रवाई जारी। बनून में फोर्सेज की ऑपरेशन एक खारजी दहशतगर्द मार वो। सिक्योरिटी जरिए मूजिब बनून में गुजे इतलात दहशतगर्दन खिलाफ कार्रवाई कई वही। दहशतगर्दन के चुरपुर भी नजर आए। सिंध हुकूमत एहतजाज जो हक खसे छो। वे सिंध रैली का अग कलम 144 लागू कई वो। सखर में डिस्ट्रिक्ट बार के खिताब कदे एसयूपी के मरकजी सदर सैयद ज़ैन शाह है तो मकानी इदारन जरिए सूबाई हुकूमत के गैर फाल करण की कोशिश कई पई वे। मुल्क में सियासी गैर यकीन वाली सूरत हाल है ए कंखे भी खबर ना तो सुबाने सूबा ठाया वाया तो एनएफसी 1991 वो पानी वो पान मुरादो खत्म थी वो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। आप प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
4: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
5: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
5: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
5: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
6: सुपर वाइट।
7: खुशखबरी हाणे अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप एंड इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद है। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबह जो 10 का शाम 5 ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244700।
8: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।